आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.
1: क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, पर अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-1232 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो स्टार ऑफ द वीक। और आज के स्टार ऑफ द वीक के मेहमान हैं अजय देवगन, और इसे लेकर आए हुए हमारे आदरणीय असलम राणा जी। असलम राणा जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा एक्टर को देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस गाने के साथ, और ये गाना आप सभी को डेडिकेट है, और स्पेशली मेरी सुंदरता की मुरली।

बिल्कुल ये बता मुझको सुंदरता की मूरत मेरे इन तुझे कैसा मैं लगता हूँ। वैसे बहुत सारे फीडबैक और बहुत से दोस्त जुड़ गए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हम हमेशा की तरह हमारे ये सरपू भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाईजान, वालेकुम सलाम। और उनके बाद मुबारक हुसैन जी, क्या बात है, आज लगातार दो दिन से ये दूसरे नंबर पर जुड़ रहे हैं। और उनके बाद है हमारे विशालंगज जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं विशालंगज जी आपका।

जी और इनके साथ आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आरिफ सिंधी जी, वालेकुम अस्सलाम आपका। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी। और सरोजी शेट्टी जी फाजिलका पंजाब से जुड़ गए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और रणवीर सिंह जेठला जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ ये है मंगेश देशमुख जी, वेलकम करते हैं आपका भी मंगेश देशमुख जी। और एमडी जलील जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी जलील जी। और बबीता देवी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बबीता जी। और आप गाने की रिक्वेस्ट में वहाँ से भेजिए प्लीज, जा सकता कि मुझे रहेगा याद, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। ओके यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करें, वहाँ भेज दीजिए प्लीज। और विष्णु, यहाँ पे विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं विष्णु चंद्र जी आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं राधा कृष्ण गोप जी भी। और ये प्रियंका जी जुड़ चुकी है, वेलकम है हिमेश सिमिया की बहन जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं नाम है किशन पाल शाक्य जी, वेलकम करते हैं आपका भी किशन पाल शाक्य जी। और दिगंबर सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दिगंबर जी आपका भी। और एमडी गुलबाग जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और सुनील चौहान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और आज के स्टार ऑफ द वीक के देने वाले असलम राणा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ईश्वरलाल मेहर जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और अभिषेक तिवारी जी आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ गजानन सरकार जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना जी यूएस से जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और निशांत रायबोले जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और मैं बता दूं कौन है ये, जाकिर खान जी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के स्टार ऑफ द वीक के मेहमान देने वाले असलम राणा जी के गाने से। और ये गाना वो सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो असलम राणा जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: बिल्कुल मुझे भी प्यार हो गया है ना। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं और कुत्ता मेरे जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग आर्यमन जी, गुड इवनिंग, वेलकम करते हैं आपका कुत्ता बेनी जी। इस बार आज जैसे कि आज मेरे साले के बेटे का जन्मदिन है। अच्छा, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जी हजारों साल अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। असलम राना जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: आपका भी और यहाँ पे ये मिला ही जी, वाह वाह वाह क्या गाना है, मैंने पहली बार सुना है। अगर ये बात है तो असलम राना जी को बनाते हैं आज का सॉन्ग ऑफ द डे के पहला ही विनर। देखते हैं और कितने विनर होते हैं आज के शो में। तो असलम राना जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। संगीता मुरुगल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत

0: कि अमन जी आपकी आवाज़ में साउंड थोड़ी सी कमी है। अमन जी आपकी आवाज़ में साउंड कमी है। ओके ठीक है, मैं इसको और बढ़ाता हूँ। अब मेरे ख्याल से आवाज़ अच्छी आती होगी। या हम आज मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं किया था, शायद हो सकता है इसका प्रॉब्लम आया हो। वैसे मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है। अब देखिएगा क्या हो सकता है। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि अजय देवगन के गाने सुनने को मिल रहे हैं बहुत दिन बाद, और मैं भी जुड़ गया हूँ तो बहुत अच्छा पसंद चल रहा है। धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और निशांत रायबोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और ये फीडबैक
1: ना जाने

0: आली।
1: अच्छा हिमेश रेशमिया की बहन जी, बहुत बहुत वेलकम है।
0: आली गया कोई, थैंक यू टच सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: वेलकम जी आपका भी। और गीता शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका गीता शरण जी। गजानन जी लिखते हैं कि न जाने की निगाह में क्या ले गया, कोई शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी, ओके। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि अभी आवाज ठीक आ रही है, ओके। मैंने आवाज को फुल कर दिया है, वॉल्यूम फुल कर दिया है फिलहाल, लेकिन मैं हमेशा फुल नहीं रखता था, आज अभी फुल किया हूँ, चूंकि कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं किया हूँ, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी मैं आपको अजय देवगन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए।
2: ये दास्तां है विशाल देवगन की, जिसके पिता ने सोच लिया था कि फिल्म लाइन में मैं अपने पहले बच्चे को जरूर भेजूंगा, खुद हीरो बनूं ना बनूं लेकिन मेरा बेटा जरूर हीरो बनेगा, और वो एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन का सपना सच हुआ। बेटा विशाल अजय देवगन बनके छा गया फिल्मों में। अजय देवगन का जन्म हुआ 2 अप्रैल 1969 में
3: जी।
2: इनके पिता वीरू देवगन दरअसल एक एक्शन मास्टर थे, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर साबित कर दिया कि एक्शन मास्टर का बेटा भी सुपरस्टार बन सकता है। अजय की मम्मी का नाम है वीना, जो कि खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर रहीं। इनके भाई अनिल देवगन भी फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर बने। अजय देवगन की पढ़ाई लिखाई हुई सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू से, और फिर मीठीबाई कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई आगे बढ़ाई। 1991 में कूल और कांटे फिल्म सामने आई, जिसमें अजय देवगन ने डांस भी किया, एक्शन भी किया, और मोटरसाइकिल पे सवार होने का ऐसा तरीका सिखाया कि वो मोमेंट आज भी सबके जहन में ताजा है। अजय देवगन शुरुआत में तो बतौर एक्शन हीरो ही नजर आए, फूल और कांटे, सुहाग, जिगर, लेकिन उसके बाद इनकी एक्शन सीक्वेंस से हटके नजर आया इनका इमोशनल रूप, उसके बाद नाजायज, दिल जले और जख्म। इसी बीच इनकी कॉमेडी भी नजर आई थी, जूही चावला, काजोल और आमिर खान के साथ फिल्म थी इश्क। फिल्म जख्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया, और फिर आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय का प्रेम था, संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन थी, लेकिन अजय देवगन के चेहरे की संजीदगी ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए। अभी लग रहा था कि अजय देवगन कमर्शियल फिल्मों से धीरे धीरे आर्ट फिल्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी पता चला कि नहीं साहब, ये तो अंडरवर्ल्ड पे आधारित फिल्मों में भी काम करेंगे। राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी को कौन भूल सकता है। अजय देवगन उन गिने चुने एक्टर्स में से रहे जिन्होंने हीरोगिरी के साथ साथ विलनगिरी भी की। फिल्म दीवानगी में ये बतौर विलन नजर आए थे, और फिर नजर आए नेशनल हीरो बने फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में। ऋतुपर्ण घोष की रेनकोट, प्रकाश झा की गंगा जल, मणि रत्नम की युवा, विशाल भारद्वाज की ओमकारा, और फिर सीरियसनेस की इमेज को तोड़ते हुए आई ये नजर अपने दोस्त रोहित शेट्टी की फिल्मों में। गोलमाल, फन अनलिमिटेड, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, फन बिगिंस, गोलमाल 3, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार। अजय देवगन एक बड़े ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है, इन्होंने सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग ही नहीं करी बल्कि फिल्में प्रोड्यूस भी की और डायरेक्ट भी की। अजय देवगन को प्यार हुआ काजोल से।
4: एक दिन तो होनी थी कयामत,
1: हो गई,
4: हो गई,
1: बिल्कुल
4: हो गई।
2: काजोल खुद एक सुपरस्टार बनी।
5: आवारा भवरे जो हाले हाले गाए।
2: 24 फरवरी 1999 में महाराष्ट्र नंदाज में इन दोनों की शादी हो गई। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी
3: जी।
2: 2009 के आते आते इन्होंने देवगन की स्पेलिंग चेंज कर दी।
6: तो कैसे चलेगा?
2: अजय देवगन ने फिल्में डायरेक्ट करी, फिल्में प्रोड्यूस की, और अपना एक ऐसा मकाम बनाया जो हर किसी के बस की बात नहीं है।
6: ऐसा नहीं है,
2: शेक्सपियर के ओथेलो पे आधारित ओमकारा हो, या फिर रोहित शेट्टी की मसाला फिल्में, या प्रकाश झा की सोशल ड्रामास, हर कैटेगरी में अजय देवगन ने वो कमाल किया जो कोई और नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल सही बात है, अजय देवगन ने मतलब मल्टी टैलेंटर तो है ही भाई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अब चलते हैं दो ग्रुप के पास। दो ग्रुप मतलब एक मंगेश देशमुख जी के ग्रुप और एक हमारे गजानन सलोकार जी के ग्रुप। दोनों ग्रुप की एक ही डिमांड है, और वो डिमांड है इन प्रेमी आशिक आवारा। तो मंगेश देशमुख जी के ग्रुप में वो तीन दोस्त होते हैं, हमारे राजमल हिवराले, मोहन निवारे और मंगेश देशमुख जी। और हमारे गजानन जी के ग्रुप में तो बहुत से दोस्त हैं, मैं किन किन का नाम लूं, नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए, आप सभी आते हैं इस गाने पर।

0: बिल्कुल, और ये गाना सच में बहुत ही कमाल का था ना, वैसे फीडबैक आया हुआ है। और काजल जी लिख रहे हैं कि हाँ, इससे पहले आवाज कम थी, अभी आवाज सही आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। लगता है मुझे कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ अशोक देशमुख जी, अभी तक तो कम थी लेकिन अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया ना। जलील जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, और मजा आ रहा है सुन के। और चल रहा है, और ओके, और यहाँ पे गीता जी लिखती हैं कि बहुत अच्छा जानकारी मिली है, थैंक यू सो मच आपका भी। और फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, दो ग्रुप का सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, रैना सलोकर और मंगेश देशमुख जी का, दोनों का ग्रुप का भाई अपने अपने गाने में शामिल, सभी को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका, और ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका ओम नारायण राय जी। और आरकर अभी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं ये प्यार ना दिल से होता है ना दिमाग से होता है, यानी प्यार तो इत्तेफाक से होता है, मगर प्यार करके प्यार ही मिले ये इत्तेफाक भी यानी किसी किसी के साथ ही होता है। हाँ, ये आपने सही कहा बिल्कुल। ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अस्सलामुअलैकुम अमन भाई, MD असलम राणा हापुड़ उत्तर प्रदेश वाला जी,
0: वेलकम जी।
2: अभी जो फरमाइश चल रही है वो दो ग्रुप जो हमारे गजानंद सलोकर भाईजान हैं उनके ग्रुप की, और एक मंगेशकर जी हैं उनके ग्रुप की जी, तो दोनों ग्रुपों की फरमाइश बड़ी ही बेहतरीन लाजवाब, जो कि फूल और कांटे मूवी से ली गई है।
0: जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
2: प्रेमी आशिक आवारा मजनू दीवाना, मोहब्बत में जो नाम तुमको पसंद हो हमको बतलाना, ये गीत।
0: जी, बिल्कुल।
2: और इससे पहले जो फरमाइश चली थी वो जलील अहमद जी की फरमाइश आपने प्ले की थी जी।
0: जी जी जी।
2: ना जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई।
0: बिल्कुल।
2: और अजय देवगन जी के बारे में जो आपने जानकारी साझा की है जी, वो भी बड़ी ही ज्ञानवर्धक जानकारी रही है।
0: थैंक यू सो मच,
2: बड़ी ही शानदार बेहतरीन जानकारी। और उससे पहले फरमाइश चलाई जी आपने मेरी।
0: जी जी
2: जी। आपने पसंद फरमाया और सभी दोस्तों ने पसंद फरमाया, सभी की तहे दिल से शुक्रिया जी। और उससे पहले जो आपका ओपनिंग गीत एक से लेकर 10 तक नंबर 1 है तू, और एंट्री सॉन्ग अजनबी मुझको इतना बता कि दिल मेरा क्यों परेशान है,
0: लगता है शुरू से सुन रहा है।
2: दर्ज के सभी की सभी गीत शानदार बेहतरीन उम्दा, प्रोग्राम का आगाज भी और एंट्री भी और बेहतरीन चल रही है, तो सॉन्ग एक से एक बढ़ करके आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आर जमन खान जी सुनते रहेंगे रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। शुरू शुरू में आपकी आवाज कम आ रही थी, अब सही आ रही है।
0: ओके, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और हमें गजानंद जी लिखते हैं, गणिया मन जी को प्यार भरा नमस्कार, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। बाबूलाल लंजाना जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और रवि मोहड़े जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि आदरणीय गजानंद सुलकार जी के ग्रुप की डिमांड बहुत शानदार लगी है, ब्यूटीफुल, और सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। और अजय देवगन के बारे में जानकारी भी जो मिली है वो भी बहुत ही अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी जानकारियाँ होती हैं आरजे वंशिका जी इकट्ठा करके लाती हैं, और ये ऑडियो उनमें जो भी यानी कि काट छाट करना होता है वो करके मेरे पास भेजती हैं। तो आरजे वंशिका जी को थैंक यू सो मच। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं, अमन जी आप जिन लोगों की फरमाइश शामिल करना चाहते हैं कृपया हर बात यानी 5 लोगों का नाम ले। सर जी ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं भूल जाता हूँ ना, बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं। गजानंद जी लिखते हैं कि असलम राणा जी का ये फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा है। और विजय राजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि दोस्ती हर चेहरे की मीठी मुस्कान होती है, दोस्ती ही यानी सुख दुख की पहचान होती है, और रूठ भी गए तो दिल पर हिम्मत लेना, यानी क्योंकि दोस्ती जरा सी नादान होती है। अच्छा हाँ, ये तो बात सही कहा आपने। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है। और गोविंदा खंडाडे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और शिल्पा बहन जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड है हमारे आरिफ सिंधी जी का है, सुनते हैं।
3: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से।
0: वेलकम जी।
3: आज के स्टार चॉइस में मेरी डिमांड रहेगी, जिसे देख मेरा दिल धड़का। फिल्म का नाम है फूल और कांटे। डेडिकेट रहेगा अमन सर जी आपको।
0: थैंक यू।
3: आपकी सुंदरता की मूरत जी को, आरजे आकांक्षा जी को, आरजे वंशिका जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे सोनी जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, शुक्रिया।
0: एंजॉय कीजिए आरिफ सिंधी जी।

और जुड़ चुकी है हमसे आवाज की मलिका आरजे रत्ना जी। वेलकम है आपका।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मन जी गाना प्ले करने के लिए। और आवाज की मलकार जी रत्ना जी मेरे मैसेज का जवाब भी दे दीजिए प्लीज। और ये क्या कहते हैं,
1: जिसे देख मेरा दिल धड़का, जिसे देख मेरा दिल धड़का,
0: बोलिए
1: मेरी जान तड़पती है।
0: ओहो हो,
1: कोई जन्नत की वो हूरी,
0: स्कूल की लड़की होगी है ना,
1: कॉलेज की एक लड़की है।
0: अच्छा जी,
2: बहुत प्यारा सॉन्ग है सर जी।
0: जी जी, ओके जी। और यहाँ पर रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और अशिल्पा बेन लिखते हैं कि ये कॉलेज की लड़की वाला गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि अभी आपकी आवाज़ बम बम आ रही है। अच्छा जी, ऐसा भी है क्या। मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है। आरिफ सिंधी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, ओके आई एम सॉरी। और जुड़ चुके हमसे यहाँ पे सिद्दीक सर जी, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं कि जबरदस्त गाने बज रहे हैं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है, वाह ये तो मेरा फेवरेट गानों में से एक है। अच्छा सर जी आप भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और गीता जी लिखते हैं कि ये तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मजेदार गाना। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है जी, वेलकम है आपका। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम कर है आपका। और ओके, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आमना खान जी ये लिखती हैं कि असलम राणा जी को थैंक यू सो मच आज के इतने प्यारे एंड ग्रेट एक्टर को लाने के लिए, ओके जी। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि मस्त गाना है जी, बिल्कुल। और और एमडी असलम राणा जी लिखते हैं कि अमन भाईजान अभी जो फरमाइश चल रही है आरिफ सिंधी जी की, वो कोई जन्नत की हूर नहीं, मेरे कॉलेज की लड़की है, ये तो हमारे मतलब हमारे टाइम का बहुत ही शानदार गाना है और उस समय हमारी ज़माने की याद दिलाता है। अच्छा ओके, और राय परवर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी राय परवर जी। इसके बाद अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, आज के सभी गाने में कौन सा पहले करूँ ना करूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ, सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। ओके फिलहाल आप इस गाने को एंजॉय कीजिए, मैं नाम बताता हूँ। और इस गाने की डिमांड ये की है रुबीना नाथ जी, रुबीना नाथ जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: बिल्कुल नहीं, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। और फीडबैक भी आया हुआ है, और ये क्या कहते हैं हिमेश रेशमे की बहन जी,
1: अमन जी, आप जो सॉन्ग सुनाते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा,
1: और जो कुछ लोग जो सॉन्ग गाते हैं और पीछे से आपकी जो खट्टी मीठी और चुलबुली जो बातें चलती हैं वो भी काफी अच्छी लगती है। आप मतलब सामने वाला जो गाता रहता है उसके पीछे अच्छा सा एक हंसी मजाक सा भी कर देते हैं, तो सुनने में काफी अच्छा लगता है।
0: ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। एंड यहाँ पे रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ओके, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके जी। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अमन जी आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे चल रहे हैं, बहुत मस्त लग रहे हैं। ओके जी। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ वाओ, बहुत खूबसूरत लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और रॉय पब्बू जी लिखते हैं कि अमन जी के बात में मिठास बापार, और तुहार जैसा ना मिले केहू यार, दिल कहला कि तू रहा हमेशा बन के हमार प्यार। अच्छा ई बात बात, हमारा तो ना मालूम रहा ना भाई। और वैसे फीडबैक भी और भी है हमारे पास, काजल झका जी क्या कहती है सुनते हैं।
2: महफिल ना सही तन्हाई में तो याद करोगे, महफिल ना सही तन्हाई में तो याद करोगे, कभी तो खुदा से फरियाद करोगे। महफिल ना सही तन्हाई में तो याद करोगे, कभी तो खुदा से फरियाद करोगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ना महंगा है ना महंगेगा हम जैसा, ना महंगा है ना महंगेगा हम जैसा, कभी तो इस बात पर नाज करोगे, कभी तो इस बात पर नाज करोगे। सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, काफ़ी अच्छे, सभी दोस्तों को थैंक यू। और असलम राना जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज जो आप अजय देवगन को लेके आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। और सभी दोस्तों को भी थैंक यू। अमन जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतना अच्छा सोच चंगाने के लिए बहुत अच्छा चंग रहा है, मैं भी सुन रही हूँ। काजल सीतामढ़ी से
0: धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और संगीता अम्बुलकर जी लिखते हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गानों की बारिश होने वाली है, हो रही है बारिश, आप भींग जाइए, मैं तो भींग चुका हूँ, है ना। और यहाँ पे ओम नारायण राय जी लिखते हैं कि अमन जी आज फुल एनर्जी में है। जी बिल्कुल, मैं एनर्जी में हूँ आज। और यहाँ पे कुंता बेनी जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड है रुमीना नाथ जी की, थैंक यू सो मच। और सिद्दीक सर जी लिखते हैं कि ओके, ये लिखते हैं कि फैंटास्टिक सॉन्ग है रुबीना नाथ जी को, थैंक यू सो मच। ओके जी, और अगला ये क्या कहते हैं भाई, इनके सुनते हैं पहले।
3: दिल में मोहब्बत है,
0: अच्छा,
3: आंखों में प्यार है, आज पहली बार तुझको ही चाहे,
0: ओ मेरे यार,
3: ओ मेरे यार,
0: क्या बात है।
4: बहुत खूबसूरत डिमांड है सर जी,
0: जी जी जी, वेलकम जी आपका एमडी जलील जी। और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुनी लेते हैं।
5: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मेरा गाना प्ले करके मुझे सुनवाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया।

बोल दो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे ईश्वर लाल जी लिखते हैं झक्कास गाना है और जुड़ चुकी है हमसे नमीरा खान जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम आपका। और यहाँ पे निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और राय पर बच लिखते हैं कि अमन जी नाम सुनते ही दिल धड़के धड़के लागेला। अच्छा तोहरा बिना ये दिल हर पल तड़पे लागेला, का करी यानी कितोरे से तो यानी प्यार हाथ से बढ़े लागेला। अच्छा बढ़े लागेला, ओके जी समझ गया। और अजय भगत जी कहते हैं कि अमन जी हाँ है ना, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करूंगा। आत्माराम जी लिखते हैं कि यहाँ पे सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही शानदार चल रही है, सभी को धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।

0: सर जी नमस्कार, अनिल कुमार हरिद्वार से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार।
0: अजय देवगन जी पर फिल्म आए गए सभी शो हमें बहुत पसंद आ रहे हैं सर, हम बहुत ही चाव से सुन रहे हैं, रेडियो स्टार का दीवाना बना रहे।
1: धन्यवाद अनिल कुमार जी, लेकिन आपकी आवाज में बहुत घड़घड़ाहट है। धर्मेंद्र मोहन भारती जी लिखते हैं कि अमन जी नमस्ते सर, आपने मेरा गाना पेंडिंग। अरे सर जी देखिए, मैं गाने को लाइन बाय लाइन नहीं प्ले करता हूँ, मैं स्टोरी वाइज गाने को प्ले करता हूँ। जहाँ आपका गाना फिट बैठेगा वहाँ ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा गाना पहले प्ले कीजिए चाहे बाद में प्ले कीजिए, ऐसा किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ जो गाना फिट बैठेगा, मैं देखता हूँ ना, मैं लिस्ट को बार बार ऊपर नीचे करके देखते रहता हूँ, जो गाना मुझे जहाँ फिट बैठता है मैं वही प्ले करता हूँ। ये नहीं कि आपने सबसे पहले भेजे तो सबसे पहले प्ले हो जाएगा, या अभी भेजा तो कोई बात नहीं, अभी भेजा अगर अभी प्ले होने वाला होगा तो अभी प्ले हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बाबूलाल जी लिखते हैं कि गोविंदा खंडाडे जी की डिमांड मुझे अच्छी लगी है। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, गाना मुझे अच्छा लग रहा है। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं, अमन जी ये सुपर लाजवाब डिमांड चल रहा है, ये क्या कहती हैं? हिमेश रेशमिया की बहन जी,
2: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
1: ओहो,
2: मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
1: तो बोल दीजिएगा उनको।
2: ये इजहार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, बट ये सॉन्ग मुझे ज्यादा नहीं आता था, बस अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना लिया।
1: अच्छा जी।
2: और अमन जी, एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट मैंने भी की है।
1: हाँ हाँ।
2: तो प्लीज आप मुझे वो सॉन्ग सुना दीजिए।
1: हाँ सुना देंगे, जब आपका नंबर आएगा सुना दूंगा। जाकिर जी लिखते हैं कि लिखते हैं ये कि किसी को चाहने का कोई बहाना नहीं होता, दिल लगाने की कोई दीवाना नहीं होता, और आशिकी तो यानी सीखनी है तो हमसे सीखो, मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ उसे पाना नहीं होता। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और जुड़ चुकी हैं आप पे सुनीता देवी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सुनीता जी आपका। और अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, वो यानी कुंता बेनी जी का। कुंता बेनी जी इंजॉय कीजिए इस गाने को, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल तुम्ही को दिया है।

वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और कुंता जी लिखेंगे लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। और राज पापा जी लिखेंगे ये काजल झक्का जी की वॉइस भी एकदम झक्कास है जी बिल्कुल। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि मैंने प्यार तुम्हें से किया है, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और देवराज जी लिखते हैं कि हम तोरे लड़का अच्छा जी ओके। और यहाँ संगीता मुर्गा जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। और जी जी बिल्कुल, उनका नाम है यानी कि प्रियंका जी नाम है, आरजे रत्ना जी उनका नाम, जो हिमेश रेशमिया की बहन जी है उनका नाम है प्रियंका जी ओके। और यहाँ पे अरुण मंडल जी लिखते हैं कि मैंने प्यार तुम्हें से किया है, गाना मस्त लगा है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुपर डिमांड है, धन्यवाद देते हैं उनको। और ये फीडबैक

0: अच्छा जी,
1: तुझी से मैं प्यार करूं। थैंक यू,
0: वेलकम जी। और आर्य सिंह जी लिखते हैं ये कुंदा बिन जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि मैं दुनिया से नहीं डरना चाहता हूँ। हाँ, मत डरिएगा। और गीता जी लिखती हैं कि इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट करने वाले दोस्त को धन्यवाद है। और कुंता जी लिखती हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और ओके जी। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आज का थीम क्या है। अच्छा, ये लिखते हैं कि अर्ज किया है यानी कि पा लेना यानी कि कठिन नहीं है, मतलब कठिन है संभालना। अच्छा, संभाल कर रखना, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा जी। यानी कि पाना तो कठिन नहीं है, उसे संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा यानी कठिन होता है। और देवराज जी लिखते हैं कि बहुत ही मेहनत लगता है। हाँ जी, मुझे पता है मेहनत लगता है। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और फिलहाल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ आवाज़ की मलका आरजे रत्ना जी का। ये क्या कहना चाहती हैं, पहले क्या सुनवाना चाह रही हैं, सुनते हैं पहले इनकी ऑडियो को सुनते हैं रत्ना जी।
2: हेलो, नमस्ते एंड गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी और रेडियो हॉट स्टार के सभी दोस्तों को भी आरजे रत्ना का प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। और अमन सर जी, बहुत दिनों के बाद हम भी आज प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं आज स्टार ऑफ द वीक अजय देवगन जी के फिल्मी सॉन्ग। बहुत ही बढ़िया गीत है और एक से बढ़कर एक गीत है उनके, और हमें भी एक गीत बहुत ही पसंद है जो हम सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है इश्क और गीत की बोल है, देखो देखो जानम हम दिल अपना

0: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए लाए। तो सुनवा दीजिए ये प्यारा सा गीत, और ये गीत हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे सभी दोस्तों को, और हम सुन रहे हैं रेडियो हॉट स्टार जो हमें दीवाना बना देता है। थैंक यू।
1: ओके, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और राजेश गौतम जी ने ये रिक्वेस्ट किया है, उनकी वो सविता इन गौतम जी का कल इन जन्मदिन है, तो स्पेशल रिक्वेस्ट उनके गाने बजेंगे सुबह 10 बजे से। और 24 अगस्त को हमारे दोस्त यानी कि आर के रवि जी का भी जन्मदिन है, तो उनका भी स्पेशल रिक्वेस्ट बजेगा सुबह 10 बजे से 24 तारीख को। तो आप लोग जरूर सुने उनके उनके पसंद के गाने को। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। देवराज जी लिखते हैं कि रोज सुबह उठकर मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ और सोचता हूँ कि बिना पढ़े ही कलेक्टर कैसे बन जाऊँ। अच्छा तब तो इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकते हैं ये फीडबैक।
1: अमन सर जी, आरजे रत्ना जी की डिमांड बहुत ही प्यारी और हम सब श्रोताओं को डेडिकेट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अमन सर जी, आपने गाना प्ले करके हमें सुनवाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि आरजे रत्ना जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है और ये फीडबैक।
2: आरजे अमन सर जी, आरजे रत्ना जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे काजल झक्का जी क्या कहते हैं?
3: ये रत्ना दीदी का गाना बहुत अच्छा बजा है, काफ़ी अच्छा उनका फरमाइश और गाई भी बहुत अच्छा है, थैंक यू उनको। मैं काजल सीतामढ़ी से।
0: ओके जी। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन जी आज मेरे अच्छा जी, ओ ऐसा है क्या? सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर सुपर सुपर हिट चल रहे हैं। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब डिमांड, इस डिमांड के लिए आरजे रत्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कुंता बेनी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच आरजे रत्ना जी इतनी प्यारी डिमांड के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी प्रियंका जी का। और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं अकेली ना बाजार जाया करो, नज़र लग जाएगी, बिल्कुल।

0: बिल्कुल नजर लग जाएगी, अकेले मत जाया कीजिएगा प्लीज। और बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, और बहुत दिन के बाद आपने आपने विवेचन क्या लिखे हैं। अच्छा ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आरजे रत्ना जी ने बहुत दिन बाद आई हैं और अपना गाना सुनाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गाना डेडिकेट करने के लिए। ओके जी, समझ गया आपकी बात को। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि नज़र लग जाएगी जी, बिल्कुल लग जाएगी जी। और रणवीर सिंह लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी की डिमांड बहुत ही लाजवाब है, सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राय परवत जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी का डिमांड बहुत ही लाजवाब है जी। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि ये प्रियंका जी का डिमांड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये फीडबैक।
1: अरे बेटा चिंकी, मेहमान आ गए, जरा चाय तो बना दो, पर शक्कर कम डालना, शक्कर महंगी हो गई है।
0: अच्छा
1: चिंकी, दादाजी मैं चाय में शक्कर डालूंगी ही नहीं, रेडियो हॉट स्टार के मेहमानों को मीठे मीठे गाने सुना दूंगी, चाय वैसे ही मीठी हो जाएगी।
0: वाह वाह वाह, दीपक कुमार गायकवाड़ जी, आज मैं आपको स्पेशल कॉल करने वाला हूँ आपके प्यारे प्यारे फीडबैक के लिए। ओके, फिलहाल मैं बता दूं कि अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूं वो कौन सी है। ये दो दोस्तों की डिमांड है हमारे, एक इन विष्णु जी का डिमांड है, और विष्णु जी के साथ साथ एक साहब और भी हैं, नाम मैं लेता हूं, उनका ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल आप लोग गाने एंजॉय कीजिए, यानी विष्णु जी के साथ साथ है हमारे अभिषेक तिवारी जी। हाँ, दो दोस्तों की डिमांड है, दुनिया की ठा ठा ठा, एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, सच में का? और ये यानी कि हिमेश रेशमे की बहन जी क्या कहती हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं, यानी कि प्रियंका जी।
1: अमन जी, सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा मैंने चॉइस करा था, बट शायद नेटवर्क इशू के चक्कर में पूरा प्रॉपर सॉन्ग सुनने में नहीं मिला।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लास्ट में आप अपनी पसंद का कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाते जाइएगा, क्योंकि मैं तो अपना सॉन्ग नहीं सुन पाई।
0: अच्छा,
1: जो कि मुझे पसंद था वो नहीं सुन पाई मैं अच्छे से। अच्छा। बट आप लास्ट में अगर आपको जैसा टाइम मिले तो आप अपनी पसंद का कोई अजय देवगन से रिलेटेड कोई।
0: ओके, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो इतने सारे गाने छूटने वाले हैं कि मैं अपनी पसंद कहां से बीच में लाऊंगा, है कि नहीं। और प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि शानदार एंड लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ओके, और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि विष्णु चंद्र जी अभिषेक तिवारी जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत दोनों को धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और अच्छा जी, ओके। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड शानदार लगी है। और गीता जी लिखते हैं कि ये काजल झा की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, अगला जो डिमांड है वो बहुत से दोस्तों के हैं। एक मुझे दिख रहा है हमारे ये सचिन झेंगड़े जी, और सचिन झेंगड़े जी के साथ साथ और भी दोस्त हैं, उनका नाम मैं लूंगा, ढूंढ के बताऊंगा। फिलहाल आप गाने सुनिए उनके पसंद का। तो सचिन झेंगड़े जी है और इनके साथ साथ और भी दोस्त हैं, बता रहा हूं इनका नाम। और ये हमारे ये रणवीर सिंह जेठालाल जी हैं, इनकी भी यही डिमांड है, राह में उनसे मुलाकात हो गई। और भी बताता हूं अगर नाम मिल

0: हो गई और जिसे डरते थे वही बात होगी। कौन सी बात तो आप समझ रहे हैं ना। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अमन सर जी मैं भी सुन रहा हूँ लेकिन फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? आप इन्हें कल भी फीडबैक नहीं दिए थे। अनिल कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी नमस्ते, गुड इवनिंग, और अजय देवगन के सभी गाने सुपरहिट चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि सचिन झंगड़े जी और रणवीर सिंह जेठालाल जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, दोनों को धन्यवाद देते हैं। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि नाम अजय है, अंदाज सिंगम है, आंखों में आग और बातों में दम है, और दुश्मन कांप जाए दोस्तों के लिए जान है। आहा, क्या बात है। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत ही गाना सुपरहिट गाना लगा है मुझे। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि राहुल में उनसे मुलाकात होगी, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी फरमाइश को सुनवाने के लिए। और अजय कुछ लिखते हैं कि ये सदाबहार गाना है। जी बिल्कुल, मजा आ गया है। और मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मीना कुमारी जी आपका भी। और कुंता जी लिखते हैं कि ये यानी कि सभी दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अच्छा,

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बट फिर भी मैं अमन जी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लास्ट में थोड़ा सा ही सही पर एक लाइन अपनी पसंद का सॉन्ग मुझे जरूर सुना के
1: चाहिए। ओह माय गॉड। और यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार जी लिखते हैं राहों में उनसे मुलाकात होगी, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, जब आमने सामने हुए हैं यानी मुलाकात हो गई है, तो यानी कि प्रमोद जी का गाना मैं प्ले करता हूँ। प्रमोद जी इंजॉय कीजिए, तू मेरे सामने।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, और शिल्पा बेंजी लिखते हैं कि तू मेरे सामने बहुत ही बढ़िया गाना लगा है ये, और रणवीर सिंह जैसा लिखते हैं कि ये तू मेरे सामने मैं तेरे सामने गाने मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और गजानंजलि जी का आदरणीय दोस्त प्रमोद कुमार जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, शुक्रिया मेरे दोस्त। और कुंता जी लिखते हैं कि ये प्रमोद जी की पसंद बहुत ही प्यारी है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड और यहाँ पे ओके और यहाँ पे ओम राय राय जी लिखते हैं कि यानी कि कुछ लोग धूप होते हैं तो कुछ लोग छाव होते हैं, और तुम दोनों हो एक साथ, धूप भी अच्छी लगती है और तेरे बिना छाव भी उदास है। ओके जी, इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला वो शाहिद अंसारी जी का, शाहिद अंसारी जी सुनना चाहते हैं फूल और कांटे का आई लव यू। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: लव यू एंड बहुत सारे फीडबैक आए थे यहाँ पे, यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी फरमाइश को प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम अमन बरगन, मैं एमडी असलम राणा हापुड़ उत्तर प्रदेश वाला जी।
0: वेलकम जी।
1: वाह जी वाह, किस गाने को पसंद बताएं अपनी, किस गाने को ना पसंद?
0: जी जी जी,
1: बल्कि आज तो ऐसे समझो जैसे फेवरेट लिस्ट चल रही हो। सभी गाने एक से एक बढ़ करके आ रहे हैं, सभी गाने मस्त जबरदस्त चल रहे हैं जी,
0: जी
1: किसकी
0: जी।
1: तारीफ करें किसकी नहीं,
0: सही बात।
1: सभी दोस्तों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है एक से एक बढ़ करके सॉन्ग। वैसे जो हमारे आदरणीय प्रमोद कुमार जी ने अभी जो गीत चलवाया है वो तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग में से है जी।
0: अच्छा
1: जी, चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी का जो सॉन्ग है, सोनाली बेंद्रे जी को जलाते हुए जो रानी मुखर्जी और अजय देवगन जी इस गीत को एक्टिंग करते हैं जी इस गीत पर, तो ये बहुत ही बेहतरीन गीत लगता है।
0: अच्छा।
1: वैसे मेरी फेवरेट हीरोइन जो है सोनाली बेंद्रे भी हैं।
0: अच्छा।
1: उन्हीं की वजह से मुझे ये गीत और भी अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया एक से एक बढ़कर फरमाइश भेजने का और प्रोग्राम को शानदार उम्दा लाजवाब बनाने का।
0: जी बिल्कुल।
1: वैसे अमन भाईजान विनर बनाया है, तो मैं अब तक मैंने गीत इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमारी बहन जो है, वैसे आप तो कहते हैं हिमेश रेशमिया जी की बहन, मैं तो हिमेश रेशमिया नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बेसुरा हूँ। ये तो हमारी बहन बहुत सुर से गाती है प्रियंका जी, तो प्रियंका जी भी बहुत रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कोई गीत अपनी पसंद का चला दें।
0: ओके।
1: तो मैं जो सॉन्ग ऑफ द वीक बना हूँ, हाँ जी सॉन्ग का विनर बना हूँ
0: जी जी जी,
1: उसके लिए जी आप हमारी बहन प्रियंका जी की फरमाइश पूरी कर दें और कोई गीत अपनी पसंद का प्ले कर दें। सुनते रहेंगे इसी तरीके से रेडियो हॉट स्टार आर जमन खान जी के साथ जो दीवाना बना दे। वैसे मेरा कहना यह है प्रियंका बहन जी से भी, क्योंकि बहुत से दोस्तों की फरमाइश छूटने की आशंका है, तो किसी दोस्त को नाराज नहीं करना, समय के काहली की वजह से, समय ना होने की वजह से फरमाइश छूट रही हो किसी साथी की, तो उसी गीत को आप अमन भाईजान जी अपनी फरमाइश भी बता दे, अपनी पसंद भी।
0: ओके, ओके,
1: और प्रियंका बहन जी का भी मन रखते और मेरी फरमाइश भी वही पूरी हो जाएगी।
0: ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, और यहाँ पे रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये फूल और कांटे गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और गीता जी लिखती हैं कि धीरे से एक बात कहूँ, बहुत ही बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच आपका इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं कि आई लव यू वाला गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। अजय कुछ लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गीत बजाने के लिए। अच्छा, ये आपका गीत भी है, मैंने तो अभी लिस्ट में देखा ही नहीं आपका गीत कहाँ है। मीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच हर टचिंग सॉन्ग सॉन्ग को प्ले करने के लिए, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: दिल ये कहता है,
0: अच्छा
2: कानों में तेरे,
0: ओहो
2: थोड़ा करीब आके बाहों में तेरे, धीरे से मैं एक बात
0: ना ना आप जोर से कहिए,
2: क्या आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू इतना अच्छा सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: ओके जी, और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर असलम राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है जाकिर खान जी का है, सुनना चाहते हैं, मेरा फेवरेट गाना है तुम जो आए जिंदगी में, बात बन गए, सच में ये मेरा फेवरेट गानों में से एक है। अगर ये गाने की डिमांड नहीं आई होती तो मैं इसी गाने को प्ले करता लास्ट में।

जिंदगी में बात बन गई और प्रमोद जी लिखते हैं कि दोस्त जाकिर जी के पसंद डिमांड औसम लगी है। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि तुम जो है जिंदगी में बात बन, ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तुम जो है जिंदगी में सुपर सुपर सुपर एक्सीलेंट सॉन्ग है इस गाने के लिए। और गीता जी लिखते हैं कि ये तुम जो है जिंदगी में, ये गाना सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि तुम जो है जिंदगी में बात बन गई, गाना मुझे बहुत ही पसंद है। आत्माराम जी लिखते हैं कि आई लव यू वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और ओके, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो सुनीता गोप जी का। और सुनीता गोप जी सुनना चाहती हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, अरे तो अब नहीं तो कब नहीं। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वाह, बहुत प्यारा गाना है। थैंक यू सुनीता गोप जी, और इस गाने के लिए आपको बनाते हैं आज के सॉन्ग विनर। बधाई हो।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास और राम कुमार मिस्त्री जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि नमस्कार अमन सर जी, मैं भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो गया हूँ और ओके तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लग रहा है, ओके जी। और संगीता अम्बुलकर जी लिखती है कि वाओ बहुत ही प्यारा गाना है ये जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जाकिर जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अम्मा जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि नहीं नहीं कभी नहीं, गाना बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बिल्कुल। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी की पसंद शानदार लगी है। और प्रियंका जी क्या कहती है,
1: अमन जी जो अभी आपने सॉन्ग सुनाया वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं इसकी कुछ लाइनें हैं जो आपको सुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा,
1: चाहतों का मजा
0: अच्छा।
1: पास लो मैं नहीं आ छुपा लूँ तुम्हें।

वेलकम जी आपका, और राहुल पासी जी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सुनीता गोप जी, सर्वजीत सेठी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है, और गीता जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी के लाजवाब गाने के रिक्वेस्ट करने के लिए धन्यवाद। तो ये प्रियंका जी का नहीं था डिमांड, ये था सुनीता गोप जी का। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या गाना है, दिल खुश कर दिया इस गाने ने। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी की डिमांड सच में औसम लगा है, इस गाने को सुनकर तो दिल खुश हो गया, मजा आ गया। इसी बात पर राधा कृष्ण गोप जी का भी डिमांड प्ले करते हैं, चूंकि नहीं नहीं कभी साथ ना छोड़ेंगे, तो भाई इन्होंने भी ऐसा कुछ गाना भेजा हुआ है कि मुझे अभी प्ले करना पड़ेगा, इन्जॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल मैं करता रहूंगा प्यार। और यहाँ पे सौरभ सिंह जी लिखेंगे थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और कुंता जी लिखेंगे अमन जी बहुत ही शानदार गाने चल रहे हैं और सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं और सभी को थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे गाने की डिमांड करने के लिए। बाबूलाल जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी है। और राम कुमार मिश्री जी लिखते हैं कि सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ आर के रवि जी का करने वाला हूँ। आर के रवि जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

और अगला और जो अगला गाना प्ले होगा वो रवि यानी कि लोधी जी का प्ले होगा, रवि लोधी जी। ये तो है आर के रवि जी का, अगला गाना भी वो रवि जी का ही होगा, लेकिन वो है रवि लोधी जी, एमपी से, मध्य प्रदेश से।

0: तेरा मेरा साथ रहे और सच में गाना बहुत यानी प्यारा लगा। ये फीडबैक सुनते हैं, क्या कहती हैं हिमेश रेशमे की बहन जी।
1: सपना समझ के भूल ना जाना।
0: अच्छा
1: ओ दिलवा।

0: बहुत ही प्यारे सॉन्ग हैं और सभी सॉन्ग इतने अच्छे हैं अजय देवगन जी के कि बिना गाए रहा ही नहीं जा रहा। थैंक यू।
1: अच्छा ओके जी, और निशांत राय लिखेंगे, बहुत ही प्यारा गाना है ये। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि आर के रवि जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और सुनीता गोपी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और गीता जी लिखती हैं कि आर के रवि जी की पसंद शानदार लगी है। और नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, जल्दी मैसेज भी नहीं खुल रहा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि हाथों की लकीरों में लिखा है गाना, मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है ये, बिल्कुल। और दत्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड जैसे कहा है ये रवि लोधी जी का है, और रवि लोधी जी सुनना चाहते हैं ये प्यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए।

यार गजब की चीज है, जिसे हो जाए बस हो जाए है। और वैसे फिलहाल अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो सर्वजीत सेठी जी का है, और सुनना चाहते हैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। एंजॉय कीजिए इस गाने के बाद आते हैं, फिर फीडबैक शामिल करते हैं।

0: मैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। और बाबूलाल जी लिखते कि ये रवि लोढ़ा जी की, अरे रवि यानी लोढ़ी जी है यार, आप मुझे भी गड़बड़ा दोगे यार। ओके, अमीना जी लिखते हैं, वाह बहुत ही सुपरहिट गाना है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और फीडबैक सुनते हैं।
1: धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है,
0: अच्छा यानी प्यार
1: को, हद से गुजर जाना है, मुझे बस तुझे

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये
1: जी। धन्यवाद देते हैं आपको। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं?
2: अजय देवगन जी, आपकी याद में गाने बज रहे हैं शाम से रेडियो हॉट स्टार पे।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन चॉइस है ये। और ओम राय राय लिखते हैं कि ये नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के। और कुंता बेनर्जी लिखते हैं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो बबीता जी का। बबीता जी सुनना चाहती हैं दिल से, दिल ने इकरार किया है।

0: बिल्कुल दिल ने दिल से इकरार किया है और निशांत राय बोले जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया है, मजा आ गया सुन के। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
1: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके कार्यक्रम शुरू से ही सुन रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अमन सर जी, हमारे इधर कुछ कार्यक्रम था इसलिए मैं कार्यक्रम में चला गया था, लेकिन गाने सुन रहा था उसी समय भी।
0: अच्छा।
1: तो अमन सर जी, अभी तक मेरा गाना आपने सुनवाया या नहीं सुनवाया, इसका जवाब मुझे आप ज़रूर दीजिएगा। अमन सर जी, मैं अभी तक भी कार्यक्रम सुन रहा हूँ और अभी तक जितने भी अजय देवगन के गाने आपने सुनवाए वाकई तारीफ के काबिल है, सभी गाने सुपरहिट और आज बहुत
0: जी। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आप यानी स्टार्टिंग से प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका गाना प्ले हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो आप मुझे बताएंगे ना। मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका गाना प्ले हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि और जो भी मैं गाना प्ले कर रहा हूँ वो जितने भी यानी कि दोस्त वहाँ सॉन्ग रिक्वेस्ट में कर रहे हैं, मैं अधिकतर गाने मैं वहीं से प्ले कर रहा हूँ। ओके, तो इसका भी ख्याल रखें आप लोग। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत ही बढ़िया प्ले हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सुनकर। संगीता जी लिखते हैं कि वाह बबीता जी ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है वाला गाना मुझे अच्छा लगा है। और सुनीता देवी जी लिखते हैं कि नमस्कार अमन सर जी, और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच सुनीता जी आपका। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो ओम नारायण राय जी का है, सुनना चाहते हैं मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। अच्छा।

जाने ये क्या किया। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे हुए हैं। और प्रियंका जी क्या कहती हैं, इन हिमेश रेशमिया की बहन जी क्या कहती हैं, इनकी सुनते हैं पहले। नेटवर्क बहुत स्लो है।

0: ओह माय गॉड, मैसेज नहीं खुलेगा तो मैं मैसेज शामिल करूंगा कैसे? बहुत नेटवर्क स्लो चल रहा है यहाँ का। ओके, देखता हूँ। हाँ, खुल गया।
1: अमन जी, एक सॉन्ग है अजय देवगन जी और ऐश्वर्या का, जो कि हम दिल दे चुके मूवी का है, उसकी दो लाइन में सुनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सॉन्ग की फरमाइश आई है, पर ये सॉन्ग मुझे पसंद है।
0: ओह माय गॉड,
1: तेरी यादों के साए में गुजरेगी जिंदगी, उस खुदा

0: ऑसम, थैंक यू।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपका भी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया गाना मुझे बहुत पसंद आया है। ओम नारायण जी लिखते हैं कि बहुत इंतजार करना पड़ा मन जी, और अब तक मेरा गाना का नंबर आ ही गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद, और आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने शुरू से गाने सुनवाए तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अमन सर जी, मैं कार्यक्रम में था इसलिए आवाज़ मैंने मोबाइल की बहुत कम रखी थी, इसलिए कुछ कुछ गाने सुनने को मेरे मुझे नहीं आ रहे थे, लेकिन इसलिए मैंने आपसे पूछा। लेकिन आज से गाने हम सॉन्ग रिक्वेस्ट से आपको भेजे या अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजे, इनका जवाब हमको जरूर दीजिएगा। क्यों,
1: मैं आपको बता दूंगा, अगर आप इनके सॉन्ग रिक्वेस्ट से भी गाने भेजेंगे वहाँ भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन अभी कुछ, हाँ अभी रिकॉर्डिंग इन कीजिएगा तो उसमें स्क्रीन यानी कि लॉक नहीं होना चाहिए, जरा इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि हाँ अगला डेट आएगा ना उसमें स्क्रीन इन लॉक भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए स्क्रीन लॉक नहीं होना चाहिए जब रिकॉर्डिंग कीजिएगा। तो बस इतना ही आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। और सुनीता देवी जी लिखते हैं कि अमन जी जब आप गुनगुनाते हैं तो गाने में साथ साथ अच्छा लगता है। ओके, और मेरे हस्बैंड भी आपके कार्यक्रम को सुनते हैं और मैं भी यानी कहती हूँ अच्छा आज समझ में आता है कि आपके कार्यक्रम को सुनते हैं तो क्या मालूम होता है। ओके जी, और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि ओके, और जुड़ चुकी है यहाँ पर खुशबू, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है खुशबू जी। और अच्छा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, चलिए अभी मैं वॉल्यूम को यहाँ पे कम कर देता हूँ। अब बताइए आप ठीक है वॉल्यूम या नहीं है, जरा मुझे बताइएगा प्लीज़। और बबीता जी क्या कहती हैं।
3: नमस्ते अमन सर जी, शुक्रिया, धन्यवाद, आपने गाना चलाया और दोस्तों को भी फिर भी दिए, दिल से धन्यवाद। मैं दो दिन से अपने आप में नहीं हूँ अमन सर जी, क्योंकि मेरा लड़का बीमार हो रहा है, तो मेरा शरीर तो काम पर जाता लेकिन आत्मा मेरा घर पर रहता है। तो अभी मेरा लड़का थोड़ा बोला है कि मम्मी चाय बना दे, मन खुश हो गया, इसलिए मेरे दिमाग में कोई काम नहीं आता, ना फिर भी दे पाती हूँ ना कुछ बोल पाती हूँ, बस प्रोग्राम सुनती हूँ, प्रोग्राम नहीं छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं मिस करता ही नहीं। तो सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहा है,
1: धन्यवाद। लेकिन मैं यानी दुआ करूँगा कि आपके बेटे जल्द से जल्द वो अच्छा हो जाए। फिलहाल अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ आमना खान जी का है। आमना खान जी, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: हॉटस्टार
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं आमना खान जी की डिमांड लाजवाब चल रही है और दत्ता जी लिखते हैं आमना खान जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और काजल छक्का जी लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों गाना बहुत अच्छा अच्छा बज रहा है, सभी को थैंक यू सो मच इसी बात पे। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग चल रहा है आमना खान जी, थैंक यू सो मच इसी बात पर। अगला जो डिमांड है वो नमीरा खान जी का है और नमीरा खान जी सुनना चाहती हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, और यहाँ पे मंगेश दत्मुजीत सिंह अर्जमन जी, बहुत ही लाजवाब डिमांड चल रहा है, सभी दोस्तों का धन्यवाद। और आमना खान जी और नमीरा खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि आमना जी और नमीरा जी का प्रश्न बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे खुशबू जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच। इसके बाद अगला जो डिमांड है हमारे ईश्वरलाल मेहर जी का, ईश्वरलाल मेहर जी क्या सुनना चाहते हैं, ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटेस्ट जो आपको दीवाना बना दे और फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं
1: वेरी गुड इवनिंग अजय
0: अमन यस सर
1: हाउ आर यू दिस इवनिंग
0: गुड इवनिंग
1: नाइस म्यूजिक नाइस प्रोग्राम टुडे
0: ओ थैंक यू सो मच डियर निकलस और यहाँ पे इतने खुशबू लिखती है कि अनसुना गाना सुनने को मिला जी और ओके और यहाँ पे निशांत राय बोले लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है और सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी अपनी पसंद अच्छा ओके आपने मेरे पसंद पर छोड़ दिया ठीक है मैं कोशिश करूँगा जरूर गाना प्ले करूँगा एक असलम राना जी का हो गया एक आपका हो गया अभी ईश्वर जी का बाकी है राहुल पासी जी लिखते हैं कि मेरा प्यारो मेरे यार गाना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है ये फीडबैक सुनते हैं
2: धन्यवाद अमन सर जी आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब चल रहा है तो सुनते रहे रेडियो होस्ट चार्ज जो सबको दीवाना बना दे मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से
0: ओके जी धन्यवाद आपका भी और ये क्या कहती हैं आमना खान जी ने आज पहली बार वॉइस फीडबैक दिया है
3: थैंक यू आरजे अमन जी हमारा सॉन्ग प्ले करने के लिए
4: थैंक यू आरजे अमन जी मेरा भी सॉन्ग प्ले करने के लिए मैं आमना
3: और मैं नमीरा खान
4: ऊपर वाला आपको खूब तरक्की दी
0: मजा आ गया आमीन सुम्मा आमीन और आप दोनों ने मुझे मतलब यानी कि वॉइस फीडबैक दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ऑसम चॉइस है थैंक यू सो मच और अजय भगत जी लिखते हैं कि नहीं अभी नहीं और ये फीडबैक सुनते हैं
5: अमन जी ये सॉन्ग मैंने तो फर्स्ट बार ही सुना है पर नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है कुछ भी सॉन्ग पूरे पूरे सुनाई में नहीं आए हैं और ये सॉन्ग मैंने पहली बार सुना है जो कि मुझे अच्छा लगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैं करती हूँ तुमसे प्यार अच्छा। इसके अलावा तो ये सॉन्ग कट कट के इतना चल रहा है समझ नहीं आया बाकी सभी सॉन्ग बहुत अच्छे चल रहे हैं ऐसा मैं कहना चाहती हूँ बट एक भी सॉन्ग प्रॉपर सुनाई में सुनने में नहीं आ रहा है नेट का बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है
0: लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल यहाँ पे अच्छा चल रहा है मेरे यहाँ शायद हो सकता है कि आपकी तरफ का नेटवर्क इशू हो और कुंता जी लिखते हैं कि अमन सर जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है थैंक यू सो मच हाँ मेरा यहाँ पे कभी कभी जो मैसेज वाला ओपन कर रहा हूँ तो जल्दी ओपन नहीं हो पा रहा है उसमें गोल गोल घूम रहा है मतलब मुझे दिक्कत हो रही है मैसेज ओपन करने में क्योंकि ये मैसेज ही ओपन नहीं हो पा रहा है मैं क्या बोलूँ यहाँ पे लिखती है यानी कुंता बेनी जी के अमन सर जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है बस थोड़ा हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है और सभी दोस्तों का डिमांड आपके यहाँ भी इशू है ओ माय गॉड ये
6: अस्सलामुअलैकुम अमन भाजन मैं एमडी असलम राणा हापुड़ उत्तर प्रदेश वाला जी अभी जो ईश्वर लाल जी की फरमाइश चली है जैक एंजल ये वाला सॉन्ग वाकई ही आपका निर्णय सही रहा ये भी सॉन्ग के विनर बनने ही चाहिए बहुत ही बेहतरीन निर्णय आपका और वैसे अमन भाईजान जी ये गीत मुझे भी पसंद आया और इस गीत को लेकर के मैं यही बोलूँगा जी अमन भाईजान कि आप जो हैं इस गीत को रट लीजिए याद कर लीजिए क्योंकि आपके काम आने वाला गीत है आप सुंदरता की मूर्त को इसी तरीके से पोएम के तरीके से अपने प्यार को जताइए जी वैसे इसी तरीके से सुनते रहेंगे रेडियो हॉट स्टार आर अमन खान जी के साथ जो दीवाना बना दे प्रोग्राम चक्कास्ट मस्त जबरदस्त
0: ओके धन्यवाद वैसे मेरी सुंदरता की मूर्त जी हमें सुन रही हैं अच्छा लगता है ना और चलिए फिलहाल मैं बता दूं निकला जी क्या कहते हैं
1: अजय अमन
0: यस सर
1: यू नो व्हाट अमीना खान इज हर सिस्टर व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस
0: यस यस
1: थैंक यू सो वेरी मच अमीना खान जी आई कैन से ओनली वन वर्ड Assalamualaikum.
0: वाह वाह क्या बात है क्या बात है एंड यहाँ पे ओके जी और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो नेटवर्क एकदम झक्का चल रहा है अच्छा ऐसा है फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो संदीप सुतार जी का संदीप सुतार जी एंजॉय कीजिए

वेलकम बैक। और भी इनके प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड है, निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि गाना भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। शायद नेटवर्क का इशू है इसीलिए कोई दिक्कत हो रही है। अगला जो डिमांड है अशोक देशमुख।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

सीता रहा नहीं तू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

चलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली की जय।

0: अपनी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार